0: रेडियो सारंग 107.8 FM जय हे
1: तुलुवलाडी रेडियो सारंग 107.8 FM रंग रंगदा बदक इत्ते तुलु प्रसारा।

0: महिला समाज नकलो
1: बड़ा विद्यार्थी निधि के दुर्द के नल में दे बड़ा कोरिये ने वो तो दुर्द का साथ ले इतना दुर्द लो इतने बटर सत्य ना ना सत्य वो जाए रहता है अरे जैसा ना मैं कोर्स में चेक करे